0: हाँ जी, फंडिंग डिपेंड करती है फैमिली साइज पे। अगर किसी की फैमिली ऑफ 5 है तो उनको बहुत बेनिफिट होता है इसके अंदर। जैसे 3 बच्चे हैं, अब ऐसा भी नहीं बच्चे छोटे हों, बच्चे अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं देयर काउंटेड एज डिपेंडेंट्स। फैमिली फाइव को अप टू $100,000, फैमिली ऑफ टू को अगर कोई ओल्ड कपल है, यंग कपल है, उनको अप टू $45,000। अब इस फंडिंग में से हाफ पोर्शन तो नॉन रिफंडेबल है, टैक्स फ्री ग्रांट्स का पैसा है। कब तक? सिर्फ कल तक। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है 1 अगस्त के बाद, तो मतलब आप अभी एनरोल करें और लाइक कल ही आप, एक दिन रह गए सैटरडे का, उसके बाद तो लाइक एनरोलमेंट बंद हो जाएंगे। पीछे ना रहे, फंडिंग लें, स्किल हासिल करें।
1: नंबर है सराज दा 437-264-3175-437-264-3175। सराज, ये जेडे कोर्सेज ने काफी इजी कोर्सेज ने, ऑनलाइन कोर्सेज ने, किदां दे कोर्सेज ने?
0: हमारे पास तो वैरायटी है कोर्सेज की। आप मान के चले HVAC जैसे हार्ड कोर्सेज भी हैं, और लाइक आसान में हमारे पास मैनेजमेंट के बड़े कोर्सेज हैं, फुली ऑनलाइन है, जो जिनमें एग्जाम्स नहीं है, सिर्फ आसान सी असाइनमेंट्स हैं। तो डिपेंड आप पे करता है, बट यस, ज्यादातर लोग चूज करते हैं आसान कोर्सेज क्योंकि मिडिल एज के लोग हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, हाउस वाइफ, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड, सिंगल मदर है, तो कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्रेडिट चेक नहीं है। क्रेडिट चेक आपका 0 भी अगर क्रेडिट स्कोर, तब भी आप एलिजिबल है। और फंडिंग लें, स्किल हासिल करें, अपने अकाउंट में फंडिंग आती है, आपके में, हमारे में नहीं आती, इट्स सो ट्रांसपेरेंट।
1: सो फंडिंग सीधी थोड़े अकाउंट च, इन्हों के अकाउंट च नहीं आती। 437-264-3175 437-264-3175। एंड क्लियर करो, ये जो पैसे ने आप कितने कितने यूज कर सकते हैं? कोई लिमिटेशंस है कि आप रेंट के लिए नहीं यूज कर सकते, ग्रोसरी के लिए नहीं यूज कर सकते?
0: गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से, आपकी नीड्स के हिसाब से। अगर आपके किड्स ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी फंडिंग बढ़ जाती है। तो मतलब आपको पैसे मिली रेंट, ग्रोसरीज के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, कहीं भी उसे आप कैसे भी खर्च कर सकते हैं, तो इसलिए। लेकिन ग्रांट्स का जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट बंद कर रही है, तो इसलिए अब जो रह गए हैं थोड़े से लोग, वो पीछे ना रहे, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ले चुके हैं ऑलरेडी फंडिंग, स्किल हासिल कर रहे हैं, आप पीछे ना रहे, कॉल करें, ऑफिस आए, अभी भी कॉल कर सकते हैं आप हमें। सो देयर इज नो कैच।
1: वेरी गुड, नो कैच, कॉल करो, मिलो। 437-264-3175 437-264-3175। एक बात और क्लियर करो कि ये जो फंडिंग आ रही है, आई थिंक ये जो ग्रांट्स हैं, ये बंद भी होने जा रहे हैं?
0: बिल्कुल जी, दैट्स व्हाई दिस इज द लास्ट वीक, ये आखिरी हफ्ता है, मेनली कल का दिन ही लास्ट है, उसके बाद शायद हम एनरोलमेंट्स बंद कर देंगे नहीं लेना करंट बैचेस के लिए जिनमें ग्रांट्स आ रही है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी फुल। अब इसमें काम होने के बाद हमारी छोटी सी फीस होती है 199 या 499, 200 या 500, वन टाइम फीस है। लोग हमसे भी पूछते हैं सर वन टाइम में, हाँ सर वन टाइम है। काम होने के बाद देनी फंडिंग आपके खाते में आती है, हमारे में नहीं आती। ईमानदारी आपकी चेक हो रही, हमारी नहीं हो रही, तो पीछे ना रहे, नंबर नोट करें, कॉल आप हमें अभी करें, कल आप हमारे ऑफिस आ जाएं हरन टरी डेरी पे। 8 साल से आपकी आप लाइक इतने लोगों को असिस्ट कर चुके हैं। नंबर नोट करें 437-264-3175 437-264-3175। उन्हें तुम कॉल करो, एस्टिमेट लो, 437-264-3175।
1: आपकी कितनी फीस है?
0: 200-500 कम होने के बाद 199 या $499। लोग आगे कहते हैं सर इतनी कम फीस, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ही मेरे को आई थिंक 8 इंटरव्यू आए हैं $200 के, 8 क्लाइंट के, मुझे पता भी नहीं वो कौन है।
1: वेरी गुड, नहीं देखो ईमानदारी से काम करेंगे ऐसे होगा। सरांश, आपका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, एक बार फिर से बता दो।
0: हाँ जी, तो एड्रेस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हरन टरी डेरी पे, आप बुला सकते हैं। नंबर नोट करें 437-264-3175 437-264-3175
1: 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 Thank you so much, Sanj.
0: Thank you, जी, बहुत बहुत।
1: Very good. So, program में पंजाबी रहना ते क्या बात था ने? Very good, very good. एक ना Eagle Truck Tire and Alignment Center है। ट्रक दी अलाइनमेंट, ट्रक दे नमें टायर, ट्रक दा ऑयल चेंज, ट्रक दी कोई भी रिपेयर, इन्हां दी नवी लोकेशन खुली है 10874 Steels Avenue East, Steel ते James Snow Parkway दा कॉर्नर है। ग्रैंड ओपनिंग लई वड्डे वड्डे डिस्काउंट ने। नंबर है 647-234-6293 नंबर है 647-234-6293। जिन्हां जिन्हां ने अपनी डैक की रिपेयर करवानी है, फेंस की रिपेयर करवानी है, नंबर नोट करो, या कोई नवी डैक, नवी फेंस लगवानी है बहुत ही रीजनेबल रेट दे विच, 647-234-6293

0: माफ करो ना
1: बस इना ही आसान है कलेक्शन कॉलां पावर सेल नोटिस क्रेडिट कार्डां दा उधार सरकार वालों टैक्स दी मांग तुसी इना सब तो ही बिना बैंकरप्सी कीतियां छुटकारा पा सकदे हो
2: जे तुसी भी कर्जे तो परेशान हो ता तुसी हुणे ही सानू कॉल कर सकदे हो असी तुहाडी परेशानी दूर कर सकदे हां
1: कर्जे तो परेशान असी करांगे काम आसान
3: हर तरह के टेस्टी इंडियन फूड अते स्वीट्स ले याद रखो द्वापा स्वीट एंड रेस्टोरेंट
4: चार लोकेशंस तो तानू सर्व कर देने 100% प्योर वेजिटेरियन ते फ्रेश फूड एंड स्वीट्स ले द्वापा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट करो डाइन इन टेक आउट टिफिन सर्विस दे नाल नाल केटरिंग अक्रॉस GTA बल्क ऑर्डर ली साडी फैक्ट्री विजिट करो
5: ओ जी हुण तुसी भी देर ना लगाओ ग्रीन वैली सुपरमार्केट आओ सुपर डील्स दे नाल ग्रोसरी ते डॉलर बचाओ वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स मीट चिल्ड बियर डाइन इन ते टेक आउट भी कर सकते हो देर रात तक हफ्ते दे सत्तो दिन खुलता है तंदूरी बाइट चाट एक्सप्रेस विच बैठ के वधिया स्वादले फूड दा मजा उठाओ वधेरे जानकारी ते ऑर्डर ले कॉल कमाओ 905-913-1666 905-913-1666 या पहुंचो 11665 McQueen Drive Mayfield de Nukkarte.
6: IIM Swisscorp, with its deep-rooted service philosophy, is striving to infuse technology in routine logistics operations, starting from dispatch office, ending at yard check-in and check-outs. SwissTrack, an intelligent tracking system which provides point-to-point travel history. SwissText, a system to transport dispatching events to drivers directly from customers' own software in the form of precise text messages. IIM Swisscorp, we make tracking easy.
5: दुनिया विच किते भी घूमन फिरन लई या सस्ते टूर पैकेजेस लई याद रखो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दो लोकेशन तो अपनिया सेवावां प्रदान करदे ने 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा सेकंड लोकेशन 4550 एबनेजर रोड ब्रैम्पटन
4: Majestic Kitchens to banvao apne pasand ki kitchen state of the art machinery custom kitchen cabinets office furniture custom bars hazara color jo tusi choose kar sakde ho affordable price te excellent service custom millwork perfections de naal professionals dwara banaye jande ne tuhade pasand da design style shape finish color aaj hi call karo Majestic Kitchen nu 647-643-3040

अनस्थितं विप्रदास्यं त्रिनयनं शरदिन्दु समप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूति विरुपासितं चतुर्भुजं गोपलाङ्गं स्वर्णकुण्डल शोभितं सरोज शोभितो रस्कं रत्नकेयूर शोभितं तप्त काञ्चन सङ्काशं पीत निर्मल वाससं इन्द्रादि स्वरपोलिस्म पुनन्माणिक्य दीप्तिभिः विराजित पद द्वन्द्वं शङ्ख चक्रादि भीतिभिः करुत्पता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं स्वारिकमन संवासं विद्वादि कवचं पदे ऋषिन्दो मे शिरः पातु लोकलक्षार्प सम्भवा सर्वकोऽपि सम्भवासः पालन्ते रक्षतो ध्वनिं ऋषिन्दो मे दिशो पातु सोम सूर्यान्निलोचना स्मृतिं मे पातु नृहरिर्मुनिवर्यस्तुतिप्रिया हस्ते नासंलेशीकरासते मुखं लक्ष्मी मुखप्रियाः सर्वविद्यादिपः पातु नृसिंहोरसनां ममा

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए मौसम बहुत कमाल का चल रहा है, शामें इतनी खूबसूरत होती हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ आप सभी कहीं ना कहीं वॉक करने जाते होंगे या कुछ ना कुछ समर में बाहर निकलते होंगे, थोड़ी देर के लिए ही सही, 5-10 मिनट के लिए ही सही। जैसे भी आप जरूर कोशिश करें, चाहे अपने घर के आगे ही कुर्सी में बैठें, लेकिन जरूर बाहर निकलें, ठंडी हवा लें। सर्दियों में तो फिर हम अंदर ही घुसे रहते हैं। अब इसी विचार के साथ आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो और बढ़िया बैक यार्ड आपको फर्नीचर चाहिए, बढ़िया बारबेक्यू चाहिए और आपको टीवी लेटेस्ट चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाएंगे आपको स्पेशल्स मिल जाएंगे। अभी आपने अपनी बहन को राखी के लिए बढ़िया सा टीवी लेके देना है, पहले से ही ऑर्डर कर दो, या और कोई घर की बढ़िया गैजेट्स लेके देनी है तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में, दूसरी लोकेशन गोल्फ में, ब्रैम्पटन में और गोल्फ में दो लोकेशन है उनकी। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर उनकी स्पेशल देखो, फिर अपना ऑर्डर बुक करो 905-799-0045। अगर आपको मूव होना है तो मूव होने के लिए एच के मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं। एच के मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो 416-524-8004 पर कॉल कीजिए, 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। आपको खाना ऑर्डर करना है, लाइव बुकिंग करवानी है तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट भी और ब्रिटानिया भी मौजूद है मिसिसागा में। आप उनका ऑर्डर बुक करने के लिए 905-814-1730 पर कॉल करो, 905-814-1730, न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किचनर वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना है, बेचना है, नसीब थिंड को कॉल करिए 519-546-1260। तो आशा भोसले, उन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं, तो आप उन्हीं का ये बढ़िया सा गीत आपको सुनाती हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल।

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको गाना पसंद आ रहा होगा, तो इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और साथ साथ आप बढ़िया बढ़िया टीवी लेना है आपको लेटेस्ट डिज़ाइन का, और बढ़िया आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यूज चाहिए, किचन के गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। topchoiceelectronics.com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए 905-7900-45799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो मूविंग के लिए आप HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा। HK मूवर्स आपके लिए, उनकी बहुत सारी टीम है और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। आप उनको अभी कॉल कर लीजिए 416-524-804 अपने ट्रक बुक कीजिए और आप अपनी मूविंग का प्रबंध कर लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। मूविंग इज़ नॉट ईजी, इज़ वेरी हार्ड, पर अब आपके लिए ये सारी चिंता दूर करेंगे HK मूवर्स वाले। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे आपको बहुत बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पे जाइएगा, आपको बहुत बढ़िया, आजकल समर है, आपकी पिकनिक होने वाली है, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए और वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सारा कुछ मिठाइयाँ, खाना बहुत बढ़िया मिलेगा।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अब आपके लिए जो इस साल के गुप्त नवरात्रि होते हैं, नौ देवियों की पूजा की जाती है, तो वो 16 जुलाई से 23 जुलाई तक थे इस साल। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी ने, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, आपने जरूर मनाए होंगे। और आजकल गर्मियां हैं तो सभी मंदिरों में कथाएं हो रही हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को जरूर लेके जाइएगा। और अभी 3 दिन का ये मेला होने वाला है, जुलाई 24, 25, 26। यहाँ पे मिसिसागा में जो स्क्वायर वन का जो स्क्वायर है उनका, तो वहाँ पे 3 दिन का मेला होने वाला है, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com, और उनको आप कॉल कर सकते हैं 905-799-0045 पर। आप कॉल करके अपने ऑर्डर बुक कर सकते हो। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो ये अब आपको मुकेश जी का गीत सुनाते हैं। मुकेश और लता जी के बहुत सारे अच्छे अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, तो हमने तो उनके उस ज़माने में 70s में यहाँ पे शो हुआ करते थे और सुभता जी उनके शो करवाया करते थे, तो उसी तरह के हमें याद है, उनकी यादें हमारे दिल में हैं। तो आइए आपको एक प्यारा सा उन्हीं का गीत सुनाते हैं। आजकल मौसम बहुत बढ़िया है, तो मौसम के ही बारे में गीत सुनाते हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हो 6477737604 के। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, तो ये जो गाना है बहुत ही रोमांटिक सा है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। लेट्स गो टू जितेंद्र और नंदा के ऊपर ये फिल्माया गया था उस ज़माने में, पर उस ज़माने की अगर आप कोरियोग्राफी देखो ब्लैक एंड वाइट में भी कमाल की आपको नज़र आती है। तो इसमें भी आपको अगर मौका मिले तो, बड़ा गांव का सीन है तो बहुत ही प्यारा सा है। धरती कहे पुकार के 1969 की फिल्म।

फिर से स्वागत है। कई बार किसी से इतना प्यार हो जाता है, इतना रिलेशन हो जाता है, तो उसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जरूर कोई बंधन है और गुप्त सा बंधन है। तो ऐसे ऐसे प्यारे रिश्ते अगर आप कोशिश करो तो जरूर आपको दुनिया में मिल जाते हैं ऐसे रिश्ते। तो इसी तरह हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे, रात को 10 से 11 बजे भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। अगर आपको मूव होना है तो HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं कनाडा भर में मूव होने के लिए। उनकी बहुत सारी टीम है, तो बहुत बढ़िया आपको सर्विसेज देते हैं, आपका सामान हिफाजत से पहुंचा देते हैं। अगर आपको मूव होना है तो आप कॉल कीजिएगा, आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-804-416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, HK मूवर्स। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मिठाइयाँ लेनी है, लड्डू जलेबियाँ समोसे, तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री आपके लिए बहुत बढ़िया उनका सामान होता है, क्योंकि उनका टर्नओवर बहुत है, तो एकदम फ्रेश आपको सारा सामान मिलता है। तो आइए अब आपको ये प्यारा सा गीत सुनाते हैं, ये भी बड़ा सुंदर गीत है, मोहम्मद रफ़ी और लता जी का गाया है, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार के ऊपर फिल्माया गया था। मैं कोशिश करती हूँ आपको भूले बिसरे गीत सुनाऊं।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। बिल्कुल सही है कि ना बीते जय रात के हम मिलते रहे। उम्मीद रखती हूँ इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे, बहुत सालों से करते आ रहे हैं। अगस्त 94 में ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया था, तो आज तक हमारी आवाज़ जो हमारे स्पॉन्सर हैं उन्हीं का ये साथ है, तो हम आगे हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो आइए अब आपको एक पंजाबी का गीत भी ज़रूर सुनाना चाहिए ना, क्यों आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। सो कैसे होता है कि कोई चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, लेकिन प्यार में कमी नहीं होती है कई बार, क्योंकि दिल में कोई बस जाता है तो फिर वो उसको दिल से आप निकाल तो सकते नहीं। कुछ ऐसे रिश्ते ज़िंदगी में बन जाते हैं, तो उसी के बारे में गीत है। सो आप आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये गाना पंजाबी का है, पुराना ब्लैक एंड वाइट के ज़माने का है, पर बहुत मेरे दिल के बड़े नज़दीक हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम।

का समय समाप्ति पर है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक राम चढ़दी का तेरे पाने श्रद्धा पला है, वंडरफुल डे, और शाम को 10 से 11 बजे आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाएंगे।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: करते हैं। तन्नाश्री महला पहला, जीवा तेरा नाए, मन आनंद है जियो, सचो साचा नाओ, गुण गोविंद है जियो।
1: प्रोग्राम पंजाबी लहरा रेडियो दे नाल जी तुसी जुड़े हुए हो। 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार, सो जी वीकेंड आ चुका है। तो बिल्कुल जी वीकेंड नूं असीं हंडा रहे हां। सो प्यारी सवेर 17 डिग्री टैंपरेचर दे नाल शुरुआत अज दे इस दिन दी। दिन भर जी टैंपरेचर चलो 17 डिग्री तो तां अगे ही जाणगे, ते 26 डिग्री तक अज दे तापमान जो ने ओह होणगे। सो कल जिहा ही कह सकते हां कि मौसम जो है अज भी होणा, बदलवाई होनी है, धुप भी होनी है, पर हालांकि मीह दे संकेत अज तां कोई नहीं फिलहाल मौसम विभाग

लोकेशन जो है स्टील्स ते टॉमकिन रोड दे कोल है। नंबर 416-822-2239 416-822-2239 ते जग जी नूं तुसी फिनिक्स मिलवर्क तो अपनी कॉल कर लो तां जो कि यह काम जो है थानू मिल सके। जेकर तुसी इस दा तजुर्बा रखते हो टूल्स दे नाल काम करन दा आइडिया जो है जो तजुर्बा जो है एक्सपीरियंस जो है होना जरूरी है। 416-822-2239 जी जग जी नूं इस बारे जरूर संपर्क करो जी। सो जी प्रोग्राम पंजाबी लहरां दे नाल तुसी इस वेले बने हुए हो ते मैं यह खबर भी थोड़े नाल बिल्कुल सांझी कर देवां। जिथे याद थानू होवेगा जो टोरोंटो दा बिली बिशॉप एयरपोर्ट है जो फोर्ड सरकार ने मार्च दे विच अनाउंस कीता सी कि इस नूं एक्सपैंड कीता जाणा है टोरोंटो पोर्ट अथॉरिटी दे नाल मिल के, पर हुण इस ते रोक जो है यह फैडरल सरकार ने ला दित्ती है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्टीवन मैकिनन उन्होंने इस बारे जो है जानकारी अगे पहुँचाई कि एक सर्वे जो है वह किया गया सी ट्रांसपोर्ट कैनेडा दे वल्लों ते जिस दे विच 87,000 दे लगभग जो वसनीक ने उन्होंने अपनी जो इस काम ते अपनी राय दित्ती ते उस कारण यह डिसीजन लिया गया कि यह जो काम जो है इस नूं होल्ड किया जाना इस नूं रोकिया जाना। सो हालांकि हुण प्लान तो सरकार दा प्रोविंशियल सरकार दी गल करिए ते उन्हां दा प्लान तो पूरा सी कि इस नूं जो है एक्सपैंड किया जाएगा ते वाटरफ्रंट दे नाल तां जो कि जो जेट ने उन्हां नूं टेक ऑफ दे लई जो है वह एक्स्ट्रा रनवे जो है वह बना के दिता जा सके। तो ओंटैरियो दे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर प्रभमीत सिंह सरकारिया उन्होंने हले भी यह बयान दिते ने कि असी एफर्ट्स जो ने वह करते रहेंगे तां जो कि असी इस एयरपोर्ट नूं एक्सपैंड कर सकीए। पर दूसरे पासे टोरोंटो मेयर ओलिविया चाओ की गल करिए ते वह काफ़ी खुश ने। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी नूं थैंक्स भी किया, उन्हों का शुक्रिया भी अदा किया कि जो लोगों की गल जो है वह सुनी गई है ते वह शुरू तो ही नहीं चाहते सी कि एक्सपैंशन जो होवे ते फोर्ड सरकार जो सिटी दा लैंड है उस नूं सिटी नूं वापस ही कर देवे। सो एक पासे चलो उन्हां नूं राहत मिली है, दूसरे पासे देखते हैं कि जो फोर्ड सरकार दे प्लान्स हले फिलहाल जो ने वह फैडरल सरकार वालों खारिज कर दिते गए ने। सो उन्हां दा अगे की बनेगा, हालांकि उन्होंने कहा कि कोशिश तो चलो असी अगे पूरी करांगे। सो वेखते हैं कि आने वाले समय दे विच जो है इस रोक ते कुछ ना कुछ होर एक्शन हुंदा या फिर यह रोक जो है वह इसी तरह लगी रहेगी। सो जी प्रोग्राम पंजाबी लहरा रेडियो दे नाल इस सफर दे विच तुसी बने हुए हो ते सवेरे सवेरे आओ सरवण करिए एक शब्द ते नाल तुसी जी अपनी 6:30 बजे वाली जो जो लड़ी जो है जो खबरां दी असी शुरू करनी है यह तुसी याद रखनी ते पंजाबी लहरा रेडियो प्रोग्राम दे नाल जी इस वेले बने रहना।

तेरी नाम तेरा कुछ नहीं जो मेरा स्वास भी तेरे एहसास भी तेरा एक तो ही सतगुरु मेरा। मैं हाँ संतोष कौर एंड थोड़े सब का स्वागत कर दिया अपने शो रेडियो आवाज़ ते ते असी थोड़े नाल एक बजे तक इंज ही जुड़े रहांगे ते तुसी सारे साढ़े नाल साडा शो इंजॉय करो।

0: Rancho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 905-451-2600.
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 टू 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 टू 1 रेडियो आवाज।

0: फूल कौन से हैं? बाहरो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। फूलों के ऊपर बहुत कुछ है, पर फूल आपके घर पे आके भी आपके महबूब बन जाते हैं। प्लीज।
1: बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जैसे एनियल्स में जेरानियम, पेटूनियाज, मैरीगोल्ड, जिनियाज, एंड जो हर साल आते हैं पेरिनियस, उसमें हमारे पास लुपिन है, हाइड्रेंजिया है, रोज ऑफ शेरॉन है, बहुत सारे गुलाब के फूल हैं जो हर साल वापस आएंगे आपको और खुशबू भी देंगे। हिबिस्कस है, जासवंत जिसको बोलते हैं, उसके अलावा हनी सकल जो खुशबू देता है, मोगरा, जास्मिन वो भी खुशबूदार फ्लावर है, मैंडेविला, बहुत सारे फ्लावर्स हैं हमारे पास, आपको जो चाहिए आप लेके जा सकते हो। और इट्स एट अ रीजनेबल प्राइस एज वेल। बास्केट भी है और छोटे पॉट्स में भी है, तो अगर आप अपने जमीन पे लगाना चाहो तो छोटे पॉट्स वाले लेके जाओ और आपका बैकयार्ड फ्रंट यार्ड उसको खूबसूरत बनाओ। हेलो।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा था आपकी बात को पूरे ध्यान से। अच्छा, दूसरी बात है कि हमारे पास सारे कहते हैं कैनेडा च फुलों च खुशबू नहीं है, तुसी ग्रीन वैली गार्डन सेंटर ते जाओ, फुलों दे विचों खुशबू आउगी, तुहानू फ्रेगरेंस आउगी, महक आउगी। सो कौन कौन से फूल हैं जो फ्रेगरेंस वाले होते हैं आपके पास?
1: हमारे पास खुशबू वाले गुलाब है, देन हनी सकल करके एक बेल होती है जो ऊपर चढ़ती है और बहुत ब्यूटीफुल उसका फ्रेगरेंस होता है, खुशबूदार होता है एकदम। जासमीन भी आया है जो अपने इंडिया में मिलते हैं।
0: हाँ, कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसा डाला, उसमें नहीं वो थे फूल भी थे उसके,
2: क्या बोलते हैं, रानी वाली,
0: रात की रानी वाले फूल,
1: खुशबू बहुत। रात की रानी की बहन है हमारे पास।
2: ओ, उसकी बहन है।
0: रात की रानी इतनी खूबसूरत है, वो कैसी होगी?
1: हाँ जी, लाइलैक बोलते हैं जी, बहुत ही ब्यूटीफुल।
0: अच्छा, हम आपसे इंडोर प्लांट्स लेके गए थे हम लोग।
1: Yes,
0: मैं लोगों को बताऊंगा कि जब इंडोर प्लांट लेके जाते हैं आपको उसके साथ प्यार हो जाता है।
2: जी बिल्कुल।
0: मैं रोज थोड़े इंडोर प्लांट ने जो देखता, टमाटर मेरे हो चुके ने वड़े बाहर आउटडोर दे विच,
2: जी
0: फुल आ चुके ने बेलां दे उपर, खीरे दियां बेलां मैंने तो लेके गया सी, कद्दू चप्पण कद्दू घिया लेके गया सी मैंने तो, इन्हां तो मैं लेके गया सीगा भिंडियां, शिमला मिर्चां, करेले दियां बेलां, करेले शुरू हो चुके ने और बहुत सारे फल जिते सब्जियां आ गई ने, उत्थे हुण फुलां दी गल चल रही है। तुसी इंडोर प्लांट्स खरीदो इन्हां तों, इंडोर भी थोड़े फ्रैगनेंस रहूगी, घर के अंदर खुशबू रहूगी हर समय। इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, बैकयार्ड फ्रंट यार्ड तुसी अगर तैयार करना है, प्लस तुसी ट्रीज लेने ने जिन्हां दे उपर फल उगदे ने, फल तुहाडे अपने घर दे विच। संतोष, पंजाबी च फल दस्सो किहड़े किहड़े ने?
2: आलू बखारा, चीकू, सेव, आड़ू,
0: हाँ,
2: अंगूर।
0: संतोष प्लीज स्टॉप हियर। सो आप बोल दीजिए कौन कौन से है फ्रूट्स हैं?
1: फ्रूट्स में हमारे पास एप्पल है, पियर, क्रैब एप्पल, चेरी ट्रीज, ऑल द बेरीज, रास्पबेरी, गूसबेरी, ब्लूबेरी।
0: सो मैं सारा नहीं कल दस देना, प्रकाश सिंह बादल हमारा ना एक चीफ मिनिस्टर था, उसको कैंसर था 12-14 साल, वो कहने की जरूरत नहीं आपको बताने लगा उसका सॉल्यूशन। बुजुर्ग था, जहां हमारा इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है ना, 92 ईयर का होके गया वो बंदा, वो आदमी जो बेरीज है ना वो कैनेडा से मंगवाता था, उसकी डाइट का पार्ट थी, डेली डाइट का पार्ट थी।
1: Wow.
0: वो बेरीज को कैनेडा से एक्सपोर्ट करवाते थे यहाँ से, ऑर्गेनिक बेरीज। अगर तुसी सारे अपने घर च है जे दरख्त ला के रखते हो, बीमारियां तो दूर रहोगे। मेरी स्ट्रीट दे उत्ते यूरोपियन लेडी रहती है, लास्ट टाइम मैंने बोला था ना यूरोपियन लेडी है। सो मलिसा जो रहती है वो मतलब मेरी दादी की एज की होगी, पर अभी भी भागती रहती है, वो ट्रीज के अंदर रहती है, इसको प्यार करती है, ग्रीनरी को सारा दिन बैकयार्ड में रहती है, हर एक फूल, हर एक बूटा, हर एक जड़ी बूटी जो नॉलेज है। सो प्लीज तुसी सारे ग्रीन वैली गार्डन सेंटर नू कॉन्टैक्ट करो। ग्रीन वैली गार्डन सेंटर का नंबर है 6472225601। अज जाओ सारे कट्ठे होके, रियो दे बैग चक लो, फुलां दे बूटे चक लो, दरख्त चक लो बैकयार्ड दे विच जिहड़े तुहानू फ्रूट देणगे। 6472226501, 6472226501 दे उत्ते ग्रीन वैली गार्डन सेंटर नू कॉन्टैक्ट करना है। और ये लोकेटेड ने 2547 एम्बलटन रोड, ए हॉल्टन हिल दा ते ब्रैम्पटन दा बॉर्डर हैगा, ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੋਡ ਐਂਡ ਐਂਬਲਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਐਂਬਲਟਨ ਕੌਣ ਆ? ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਗਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਇਹ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਐਂਬਲਟਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਂਬਲਟਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਜਾ ਕੇ ਜੋਰਜਟਾਊਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਬਲਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੀ. ਸੋ 2547 ਐਂਬਲਟਨ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ. ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਲੋਕ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ, ਕਿਤਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਆਏ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ?
1: ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਲੰਡਨ ਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਪੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੰਡਨ, ਕੈਲੇਡਨ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ, ਨਾਇਗਰਾ ਸੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ
0: ਕੋਈ ਕੋਈ. ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ
1: ਵੈਜੀਸ ਹਮਨੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਥੇ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਜੀਸ ਜੋ ਥੇ, ਚੱਪਨ ਕੱਦੂ, ਰਾਮ ਤੋਰੀ, ਤਰ, ਵੋ ਸਭ ਹਮੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਥੇ.
0: ਹਾਂਜੀ,
1: ਤੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਆਪਕੇ ਰੇਡੀਓ
0: ਅਭੀ ਫਰੂਟ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਲੇਨੇ ਆਏਂਗੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ, ਲੋਕ ਫਰੂਟ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਾਏਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਮੇ
1: ਔਰ ਇਨਡੋਰ ਵੀ. ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਨਯਾ ਅਭੀ ਸਟਾਕ ਪੀਕੌਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੌਨਸਟੇਰਾ ਆਪਕਾ ਰਬਰ ਪਲਾਂਟ,
0: ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੀਜੀਏ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
1: ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ.
0: ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਕਭੀ ਘਰ ਪੇ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ. ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜੀ,
1: ਜੰਗਲ
0: ਜੋ ਸੀਡੀਓ ਕੀ ਰੇਲਿੰਗ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨਸੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਤਾ ਰਹਤਾ, ਮੰਮੀ ਥੋੜੇ ਸੇ ਔਰ ਦੇ ਦੋ. ਹਾਂਜੀ,
1: ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ
0: ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਮੰਮੀ ਹੈ ਜੀ ਵੋ. ਹਾਂਜੀ, 647-222-5601, 647-222-5601, ਐਂਬਲਟਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਕਵੀਨ ਐਂਡ ਮੇਫੀਲਡ, ਮਕਵੀਨ ਐਂਡ ਮੇਫੀਲਡ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਲਾਓ, ਦਰਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆੜੂਆਂ ਦੇ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਰੂਟਸ, ਸੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਹੋਊਗੀ. 647-222-5601, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਦੁਬਾਰਾ. ਠੀਕ ਹੈ,
1: ਠੀਕ ਹੈ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ. ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਜ਼ ਨੂੰ AM 5

0: आप बैकग्राउंड क्या रहा आपका?
1: के पहले 2003 पास आउट।
0: अच्छा, मेरे को एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि हमने एड शुरू करना है
1: जी,
0: हम केरला का ही मसाज करते हैं ना, ऐसे कुछ है ना। तो मैं मतलब उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते, ब्रिजी सर नाल कर रहे हैं।
1: थैंक यू।
0: तो ब्रिजी भी इन्ने साल तो कर रहे
2: हैं,
0: लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मैं कहे मदद भी कर रहे हैं, नाल अपना घर भी चला रहे हैं। सो मैं ब्रिजी, आपके पास कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनके आप ऑयल को, जिनके आप जो पेस्ट को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं?
1: जी हमारे साथ अलग अलग ऑयल है, महानारायण तैलम, क्षीरबल, धन्वंतरम, मुरीवण, पूरा ऑल काइंड्स ऑफ कर्पूर आदि, ये सब कर्पूर आदि।
0: कर्पूर आदि का क्या काम होता है?
1: इट्स फॉर द पेन के लिए, सब पेन के लिए जी।
0: अच्छा।
1: हाँ, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट ऑयल है,
0: डिफरेंट ऑयल।
1: हाँ,
0: सो ये पेन खत्म करते हैं। जीना दे किसी दे मोड़े च तौण च कीला हैगा गर्दन च, संतोष जी?
2: हाँ जी
0: संतोष जी, तुम्हारा रेडियो सुन रहे हो मगर पैगा सकती है। अच्छा, सो जीना दे तौण च कीला, गर्दन च कीला फसया होया, जिना दे माइग्रेन वाला किला कहना
2: जी, बिल्कुल
0: आकड़ा वाला नहीं।
2: हाँ जी।
0: सो जिना दे दर्द ने सिर दे विच माइग्रेन आ, हाफ पेन है, नहीं बंद होंदियां तुहाडियां इह दर्द, तुसी ब्रिजी कोल जरूर पहुंचना। बॉडी नू ब्लड सर्कुलेशन दा एक सिस्टम दो और ब्रिजी नू कॉन्टैक्ट करो। ब्रिजी नंबर किन्ना?
1: 6476191369।
0: कितनी अपॉइंटमेंट्स है आपके पास?
1: लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स आर अवेलेबल टुडे एंड टुमारो, आज और कल भी है,
0: आज और कल,
1: लेडी एंड जेंट,
0: लेडी एंड
1: दोनों के लिए।
0: औरतों के लिए लागे ना कुल दो कुड़ियां कम कर दिया ने, बहुत वधिया ने, वो भी केरला तो होम्योपैथिक सॉरी
1: आयुर्वेद
0: डॉक्टर
2: जी।
0: ते दूसरा ब्रिजी भी तुहानू जिहड़ा योगा ट्रीटमेंट्स और शिरोधारा
2: मेडिटेशन
0: नाल
1: मेडिटेशन
0: और भी कर दंदा है, सारे जिन्ने भी तुसी सुनदे पे हो, अपने शरीर नू तोहफा दो, अपनी बॉडी नू तोहफा दो, अपने आप नू प्यार करो, ते ब्रिजी नू प्यार करो
1: जी।
0: ब्रिजी नंबर बोल दीजिए।
1: हरिदा केरला आयुर्वेद एंड योगा सेंटर, 6476191369,
0: अपनी बॉडी नू अपने शरीर नू कॉल बजना शुरू हो गया
1: जी,
0: आ रहा है ना कॉल आने शुरू हो गया, टेक्स्ट मैसेज कर
1: दी
0: मिलती नहीं, टेक्स्ट मैसेज कर दो 6476191369 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ।

0: सो मैंने शुभानु है हुसना दे माल को सताया ना कर। शुभानु जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया अमन भाई, आप बताएं।
0: बस बढ़िया शुभानु जी, पहले सबसे आपका नंबर पंजाबी में बोल दो। 416-200-3600 शिवानु एक ऐसा नाम है जो अपने जो कितने नूं इश्क करदा प्यार करदा पैशनेट अबाउट हिज इंडस्ट्री ते कुछ होर नहीं करदा विंडोज ही लाउंदा विंडोज एंड डोर्स जे थोड़ा दरवाजा भन के कोई अंदर आ जाए शिवानु कहिंदा मैं पैसे वापस दे दूंगा जे मेरा दरवाजे दे जोड़ टुट जाण बुला के तड़वा लिओ किसी तो। नंबर टू जे साडी विंडो जिहड़ी स्पैशल ग्लास वाली सी लाउंदे आ ग्राउंड फ्लोर दे उत्ते ओनू कोई 15 या 20 मिनट तो पहला तोड़ लवे 15 to 20 मिनट लगन के तोड़न तुसी 911 डायल कर दो 5 मिनट च सर्विस आ जाती है दरवाजे से 15 to 20 मिनट पहला तोड़ के कोई अंदर बढ़ जाए घर च तो असी पैसे वापस दे देवे। साढ़े जोड़े लॉक ने जर्मन टैक्नोलॉजी दुनिया की सब तो बेहतरीन टैक्नोलॉजी चोर का गोडा टुट जूगा थोड़ा दरवाजा नहीं टुटूगा एवें नहीं असी स्लोगन बनाए। राइट विंडो फोर्स कंपनी का नाम है जिहड़ी कहती है कि पैसे नहीं है असी बैठे हाँ तुहाडी सेवा दे विच। राइट विंडो फोर्स जिहड़ी कहती है कि जिन्ना बिल तुसी एनर्जी ते एक्सट्रा पे कर रहे हो एसी का जोर लग रहा बाहरली गर्मी अंदर वालों रुकती नहीं पई तो सर्दियों च ठंड अंदर धड़ा धड़ बढ़ रही है तो फरनस बंद नहीं हो रही उन्ने पैसों की किश्त के उत्ते असी तुहाडी मंथली इंस्टॉलमेंट बना दें तो तुसी कुछ क पैसे पे करके अपने विंडो इंस्टॉल कर लेने। शिवानु अब आपके लिए बोलने को क्या बच गया ये बताओ।
1: मेरे पास कुछ नहीं अमन भाई, तुमने सारा कुछ बोल दिया।
0: हाँ शिवानु अभी रुक जाओ एक ऐसी कंपनी है थोड़े घरे ना कागज पेन लेके विंडोज की एस्टीमेट देने नहीं आते थोड़े घरे विंडो लेके आते हैं जिस टैंपरेचर ग्लास क्वालिटी लॉक्स तो वह विंडो में चुकवा के देखते हैं हाथ ना चक के देखो मेड इन चाइना माल नहीं असी ठोक के जाना उत्ते स्टिकर लगे ने एनर्जी दे लाइफ टाइम वारंटी विंडो तुसी लाओ इंजॉय तुहाडे बच्चे करनगे 25 साल मिनिमम गारंटी देने प्रोडक्ट सैल करती है कंपनी राइट विंडो फोर्स। शिवानु जी नंबर कितना अपना?
1: 416-206-3200।
0: वो कहता कि शाखा तुम मुझसे भाग नहीं सकते पाताल तक भी भाग लो तो भी राका तुम्हारे पीछे आएगा तुसी किसी भी शहर चु कॉल कर दो तुसी राइट विंडो फिट तो भज नहीं सकते राइट विंडो फिट तुहाडे शहर च आके तुहानू एस्टीमेट दे जाऊगा किसी भी शहर चु कॉल करो पेमेंट प्लान लवो सैटिस्फैक्शन लवो विंडो एक ऐसी चीज है लाने तो बाद बंदे ने फोन चकना बंद कर दिता थोड़ी लाइफ हैल है 20,000, 15,000, 10,000 खर्चन तो बाद 416-206-3200 नंबर है राइट विंडो फोर्स। शिवानु जी जाने से पहले कुछ और आप भी बोल दीजिए ना प्लीज।
1: सर थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, आज तो आपने पूरा मतलब बढ़िया मेरा ऐड कर दिया बट जो आपने बात बोली है तो सर आपकी भी एक इमेज है तो हम उसको साथ में कैरी करके चलते हैं और लोग बहुत विश्वास रखते हैं कि अमन भाई ने बोला है तो वो बात सही होगी और हम उस पर पूरे खड़े उतरते हैं
0: तो मैं भी कोशिश की थी शिवानु मैं ऐड आई सी हूं पीछे वो बंदे ने तो पैसे ले काम नहीं किया मैं कभी किसी का रेडियो से ना नहीं बोलता शिवानु कभी जिंदगी दे विच
1: जी
0: ये बहुत अच्छा रूल है पर्सनल चीजा रेडियो ते नहीं लेके आनी है
1: बिल्कुल
0: हाँ कोई किसी ने नुकसान कर रहा है मैं ऐड बिल्कुल सच्ची मैं कहना मैं नहीं कहता मेरे को बहुत कम आया हाँ मैं ऐड रोक देना एटलीस्ट मेरे करके किसी का नुकसान ना हो जाए मैं भी उन्ना ही रिस्पोंसिबल है जिन्ना दूजा बंदा जो काम गलत करके गया पर मैं हरेक नु मोनिटर नहीं कर सकता इन्ना कह सकता किन्ने साल गए शिवानु तुम मेरे ऐड कर दे
1: ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे सर
0: 3 साल हो गए हजे भी वेयर हाउस च मेरी ये विंडोज पई ने जिड़िया मैं इन्होंने तो बनवाइया ने किसी ने आके चेक करनी आके चेक कर लियो 16,000-17,000 ਦੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਚਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ 416-206-3200 416-206-3200 416-206-3200 ਰਾਈਟ ਵਿੰਡੋ ਫੋਰਸ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वापस आ गए हैं जी शनिवार की शाम की महफल दे विच एक बार फिर तो तुसी ठीरन कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल। मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नूं सारे परिवार नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नूं खुश आमदीद एंड स्वागतम।

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर आपके दिलों पर दस्तक देने की इजाजत चाहता हूं, ताकि आपको आह के साथ वाह भी कहने के लिए अपनी पेशकारी के जरिए आपको मुतासिर कर सकूं। तो चलते हैं शेर व शायरी की अजीब दुनिया में, अजीब मुख्तलिफ रंगों में, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां का। राज जो कुछ भी है इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ भी है इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो थोड़ा दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो, बाद में इसे जला भी देना। वैसे तो नशा बुरी चीज है, पर दानिश से शेर सुनना है तो थोड़ी पिला भी देना। बात पीने की चली है तो कहते हैं कि शायर दीवाने और रिंदों की सोच अजीब सी होती है, या यूं कहिए कि एक जैसी होती है। हाँ, रिंद जब पीता है तो फिर खुद के करीब होता है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसी ही गजल, गुलकार है जगजीत सिंह।

झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है, सच्ची झूठी बातें दिल की चेहरा सब बता देता है। नाम तेरा है चंदन जैसा, दिल मेरा महका देता है। खारों के साए में भी देखो वो फूल खिला देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। ख्वाबों में वो जब भी आए सोए दर्द जगा देता है। चांद बड़ा है जालिम दानिश, उसकी याद दिला देता है। समीन चांद को देखना किसे पसंद नहीं, चांद भी एक महबूब की तरह होता है। जिसको देखना तो मुमकिन है मगर पाना उतना ही नामुमकिन। तो बहुत ही खूबसूरत गजल आपकी नजर करना चाहता हूँ, जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।